0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

विक्रम संवत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 अगस्त 2 तारीख श्रावण 17 गते आईतवार चौथी तिथि। अब स्तुति करूं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पय भरी।